एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्लोक महला पहला। दुख दारू सुख रोग पया जा सुख ताम न हुई, तू करता करना मैं नाही जा हों करी न हुई। बलिहारी कुदरत वसेया तेरा अंत न जाई लखिया रहा। जात मह जोत जोत मह जाता अकल कला भरपूर रहया। तू सच्चा साहिब सिफत सवालियो जिन कीती सो पार पया। कहो नानक करते किया बाता जो किछ करना सो कर रहया। सो दर राग आसा महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सो दर तेरा केहा सो कर केहा जित वह सर्व संभाले। वाजे तेरे नाद अनेक असंखा केते तेरे वावन हारे। केते तेरे राग परिस्यों कही है केते तेरे गावन हारे। गावन तुदनो पवन पणि वैसंतर गावे राजा धर्म द्वारे। गावन तुदनो चित गुप्त लिख जानन लिख लिख धर्म बिचारे। गावन तुदनो ईश्वर।

देव त्यादर नाले गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर गावन तुदनो साध विचारे गावन तुदनो जति सति संतोखी गावन तुदनो वीर करारे गावन तुदनो पंडित पढ़न रखी सुर जुग जुग वेदा नाले गावन तुदनो मोहनिया मनमोहन स्वर्ग मछ पयाले गावन तुदनो रतन पाए तेरे अठसठ तीर्थ नाले गावन तुदनो जोध महाबल सूरा गावन तुदनो खानी चारे गावन तुदनो खंड

रहाओ। सब सुरती मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई। ज्ञानी ध्यानी गुर गुरहाई, कहन न जाई तेरी तिल वड्याई। सब सत सब तप सब चंगियाईया, सिद्धा पुरखा किया वड्याईया। तुद बिन सिद्धि किनै न पाईया, कर्म मिलै ना ही ठाकर हाईया। आखण वाला क्या विचारा, सिफती भरे तेरे भंडारा। जिस तू देह तिसै क्या चारा, नानक सच सवारन हारा। आसा महला पहला, आखा जीवा विसरै मर जाऊं। आखण औखा साचा नाऊं, साचे नाम की लागै भूख। उत भूखै खाए चलिय दुख। सो

मेरे माधु जी सत संगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरिया रहाओ, जनन पिता लोक सुत बनता, कोए न किस की तरिया, सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर, काहे मन पाओ करिया, ऊडे उडावे सह कुसा, तिस पाछे बचरे छरिया, तिन कवन खलावे कवन चुगावे, मन मह सिमरन करिया, सब निदान दस अष्ट सिदान, ठाकुर कर तल तरिया।

सतगुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगमा पारा सब त्यावह सब त्यावह तुद जी हर सच्चे सिरजनहारा सब

विसारणहारा। हरे आपे ठाकुर, हरे आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा। तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी, हर एको पुरख समाना, एक दाते एक पेखारी जी।

गुण आख वखाणा जो सेव है जो सेव है तुद जी जन नानक तिन कुरबाणा हर त्या वह हर त्या वह तुद जी से जन जुग मह सुखवासी से मुक्त भये जिन हर त्याया जी तिन तूटी जम की फांसी जिन निरभाओ जिन हर निरभाओ त्याया जी तिन का भाओ।

रहाओ। सब तेरी तू सब नीत्याया, जिसनू कृपा करहे तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लाधा मनमुख गवाया, तुदे आप विछोड़िया आप मिलाया। तू दरियाऊ सब तुझ ही माही, तुझ बिन दूजा कोई नाही। जी

तरण परे की राखुर शर्मा। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं

है, चुन चुन शत्रु हमारे मारी है, आप हाथ दे मुझे उवरी है, मरण काल का त्रास निवरी है, पूजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझू करे हो रच्छा, राख ले हो मुहि राखन हारी, साहिब संत सहाय प्यारे दी।

नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जच्छन उपजायो, आदंते कै अवतारा, सोई गुरु समझे हो हमारा। नमस्कार किसी ही को हमारी, सकल प्रजा जिने आप सुवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मु बद कियो, कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चीटी ते कुन

सुख पाए साधन के सुखी, एक एक ही पीर पछाने, घट घट के पट पट की जाने, जब उदकर्ख करा करतारा, प्रजा धरत तब देह अपारा, जब आकर्ख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ, जेते बदन

तेरा कार्ज सब सुवारना। सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मन हो विसारे, कह नानक मन मेरे सदा रहू हर नाले।

मेरा आधारु, वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै, घर सुभागै शब्द वाजे, कला जित कर धारिया, पंच दूत तुद वस कीते, काल कंटक मारिया।

गुण गोविंद गाही, सब सैनो कृपाल सुमाली, साही साही बिरथा कोई न जाय, जी आवे तुदे आही। श्लोक महला पंजवां।

दरगह पाई ठाओ। कहो नानक कृपा करे जिसनु एह वत दे, जग मैं उत्तम काढ़ी है विरले के महला पंजवा।

जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे। तिस साहिब की टेक नानक मने माहे। जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

पौड़ी नाए सुनिए सुच संयमो जम लेड़ ना आवै नाए सुने घट चानना आनेर गवावै नाए सुने आप बुझिए लाहा नौ पावै नाए सुने पाप कटे निर्मल सच पावै नानक नाए सुने सुख

0: मने सुख अमृत प्रभ नाम
1: भगत बिना कह मन विश्राम
0: प्रभ कह सिमरन गर्भ ना बसे
1: प्रभ कह सिमरन दुख जम नसे
0: प्रभ कह सिमरन काल पर हरे
1: प्रभ कह सिमरन दुश्मन टरे
0: प्रभ सिमरत कछ

0: दुर्गंध
1: सिमरन दिन रैन बिरथा बिहाय
0: देव बिना जो जीती जाए
1: भजन बिन बिरथे सब काम
0: यो कृपण के निरारक दान
1: ते जन जी घट बस्यो हर नाम।

0: जय रस भोगी
1: कई कोट पंखी सर्प पाए
0: कई कोट पातर विघ्न बुझाए
1: कई कोट पवन पानी बैसंतर
0: कई कोट देश भूमंडल
1: कई कोट सस्यर सूर निखात्र
0: कई कोट देव दान इंद्र छत्र
1: जगत सामग्री।

0: सकलाकार
1: धारे पूरी सब भवन
0: नाग संग उदय संश्रमण
1: कर कृपा जिस आपने नाम लाए
0: नाग चौथे पद में जो
1: रूप सत जा का सात स्थान
0: रूप सत केवल प्रधान
1: दूत सत सत जा की बाणी
0: सत पुरुष सब माई समाणी
1: सत कर्म जा की रचना सत
0: मूल सत सत
1: सत करनी निर्मल निर्मली
0: से बुझाए से सफली
1: नाम रब का सुखदाई
0: विश्वास नानक गुरु पाई
1: सत वचन साधु उपदेश
0: जाके हृदय प्रवेश
1: सत नृत्य बुझे जे कोए
0: नाम जपता की गत होए।

0: आप सत सत सवधारी
1: आपे गुण कारी
0: सत सत प्रभक्ता
1: सत सत जसुंता
0: जिनहार को सत सब होए ना सत सत प्रभु होए सत स्वरूप हृदय जिन मान्या
1: करावन ते मूल पछान्या।

0: कोई न रखे
1: सेवको को न पहुँचे
0: रखे सेवक उसने ऊँचे
1: प्रभु अपनी सेवा लाया
0: नानक सो सेवक दैन जिस प्रगटाया
1: की मैं कल रखे
0: कसम करे लश्कर को।

सगल समग्री तुमरै सूतर तुम ते हो सो तुमरी गत मित तुम्हें नानक दास सदा कुर्बानी। बोलना जी सतनाम श्री वाहिगुरु। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वाह श्री भगवती जी की पातशाही। दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लय त्याय। फिरंगत गुर ते अमरदास रामदासे हुई सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याय जिस जिथे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरया घर नौन त्यावे ताए सब थाई हुए सह। दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी सब थाई हुए सहाय। दसा पातशाहियां दी जो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान करके बोलो जी। पंजा प्यारियां चौहां साहबजादियां चाली मुक्तियां हटियां जपियां तपियां जिन नाम जपिया वंड के छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अंडट कीता तना प्यारियां सत्यारां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी साहब बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म है सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइयां चरखड़िया ते चढ़े आ रहे ने चराए गुरुद्वारा की सेवा लिये कुर्बानी दिते धर्म निहारिया सिखी केसा स्वस्थ सिंह निभाई तिना की कमाई का ध्यान रखे खालसा जी साहब बोलो जी। पंजा तख्ता सरबत गुरुद्वारा का ध्यान रखे बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चितावे चितावन का सदका सर्व सुख होए। जहां जहां खालसा जी साहिब तहत हर शरिया देखते फतेह बिरत की पैग पंथ की जीत। श्री साहब जी साहिब खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। सिखा नु सिखी दान केस दान रह दान विवेक दान विसा दान भरोसा दान दाना सरदान नाम दान। श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनान चौंकिया झंडे मंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखां दा मन नीवा मत उच्ची मत पत का रखा वाहिगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दे तार जी श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरुद्वारिया गुरुधामा जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया खुले दर्शन दार सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो। हे नमाण्यो के माण नितान्यो के तान नोटियां दी ओट सच्चे पिता वाहिगुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीओ दोए कर जोड़ करूं अरदास तुद भावे ता आने रास। महाराज जी आप जी दे चरणा च अरदास बेनती आप जी दी महान बख्शिश होई पावन हजूरी अंदर रात्रि दे दीवान सजाए गए सजे हुए दीवाना विच आरती शब्द कीर्तन उपरंत महाराज जी चल रही लड़ी वार गुर शब्द दियां विचारां उपरंत तन तन साहिब श्री गुरु अर्जुन साहिब महाराज जीओ आप जी दी शहीदी दिहाड़े नूं समर्पित तत् विचार यह मथुरा जग तारन को अवतार बनायो जप्यो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आयो। ऐसे सतगुरु दीन दयाल महाराज आप जी की शहीदी नु समर्पित सिख गुरद्वारा सिनहोजे दियां समूह संगतां वलों पिछले कई दिनों तो महाराज जी रात्रि दे दीवाना दे विच सुखमणी साहब दे जाप की शुरुआत की सी। अज भी आप जी ने बख्शिश की सिख संगतां ने रल मिल के सुखमणी साहब जी दे जाप किते कृपा करनी महाराज जी समुची सेवा निभाउंदिया बाणी पढ़दिया कीर्तन करदिया विचारा करदिया सुखमणी साहब जी दे जाप करदिया होईयां बेअंत भुल्लां बख्श देणियां जी अगे वास्ते समत बख्शिश करनी शुद्ध गुरबाणी गायन करन दा बल उदम बख्शिश करना जी बाणी दा भाव आईयां संगतां दे हिरदिया ते वसाउण आईयां संगतां दी हारी दर प्रवान करनी सभना दियां तिल फुल पिटावां दर प्रवान करनियां सभना नूं दरों करो नामदान गुरसिखी जीवन बख्शिश करना चढ़दी कला बख्शिश करनी कृपा करनी महाराज जी दुखां कलेशां रोगां दा नाश करना जी सुखां दा प्रकाश करना देशां विदेशां विच रख्या बख्शिश करनी महाराज जी बिन संगतां दूर दराडे पिछे घरां विच लाइव गुरबाणी दे जाप सरवण कर रहीआं हुण जाप सरवण करदिआं आप जी दा धन्नवाद करदिआं बेंत माया गुरु घर वास्ते गुरु घर दे सेवादारा सिंघां वास्ते ऑनलाइन भेटा कीती महाराज जी सारी संगत दी हारी दर प्रवान करनी सभना दी माया सफली करनी किरत कमाईआं वे बरकतां पाउणियां श्रद्धा भावनावां संपूर्ण करनियां जी आप दर घर दे सेव भाई सुशांत सच देवा वाहिगुरु जी दा शुकराना करदिआं
ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਸੇਵ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਸੇਵ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਸੁਣਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਰਾਹ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਈ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ ਜੀ, ਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲਣਾ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤਾ ਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਹਰਾ ਅਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੀ ਚਲਾਇਓ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ।

अष्टपदी। पूरे गुर का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख। सास सास सिमरौ गोबिंद, मन अंतर की उतरै चिंद। आस अनित ते अगौ तरंग, संत जना की तूर मन मंग। आप छोड़ बेनती करहौ, साध संग अग्न सागर तरहौ। हर तन के भर लिहो भंडार, नानक गुर पूरे नमस्कार। खेम कुशल सहज आनंद, साध संग भज परमानंद। नरक निवार उधारो जियो, गुण गोबिंद अमृत रस पियो। चित चित वहो नारायण एक, एक रूप जाके रंग अनेक। गोपाल दमोदर दीन दयाल, दुख भंजन पूरन कृपाल। सिमर सिमर नाम बारंबार, नानक जी का यह आधार। उत्तम सलोक साध के बचन, अमुलीक लाल एह रतन। सुनत कमावत हो तो उधार, आप तरह लोकै निस्तार। सफल जीवन सफलता का संग, जाकै मन लागा हर रंग। जय जय शब्द अनाहद वाजै, सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजै। प्रगटे गोपाल महात कै माथे, नानक उधरे तिन कै साथे। सरन जोग सुन सरणी आए, कर कृपा प्रभ आप मिलाए। मिट गए बैर भय सब रेन, अमृत नाम साध संग लैन। सुप्रसन्न भय गुरुदेव, पूरन होए सेवक की सेव। आल जंजाल बिकारते रहते, राम नाम सुन रसना कहते। कर प्रसाद दया प्रभ तारी, नानक निभही खेप हमारी। प्रभ की उस्तत करहो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत। सुख मने सहज गोबिंद गुण नाम, जिस मन बसै सुहोत निधान। सर्ब इच्छा ताकि पूरन होए, प्रधान पुरख प्रगट सब लोए। सब ते ऊच पाए अस्थान, बहुर न होवै आवन जान। हर तन खाट चलै जन सोए, नानक जिसै प्राप्त होए। खेम शांत रिद नव निद, बुद्ध ज्ञान सर्ब तह सिद्ध। विद्या तप जोग प्रभ ध्यान, ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम इसनान। चार पदार्थ कमल प्रगास, सब कै मध सगल ते उदास। सुंदर चतुर तत का बेता, समदर्शी एक दृष्टिता। ए फल तिस जन कै मुख बने, गुर नानक नाम बचन मन सुने।

सच सोचै सोच न हो गई जे सोची लखवार। भुखियां भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार। किव सचियारा हुई है किव कूड़ै टुटै पाल। हुक्म ही होवन आकार हुक्म न कहे आ जाई। हुक्म ही उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है।

0: कथन कथि नया वैतूट कथ कथ कथि कोटि कोट कोट
1: देंदा दे लैंदे थक पाहे जुगा जुगंतर खाही खाहे।

0: कोई न सुझे जे तिस गुण कोई करे।
1: सुने सिद्ध पीर सुरनाथ सुने धरत तवल आकार
0: सुने दीप लो पाताल सुनिए पोए न सके काल
1: नानक भगता सदा विगास सुने दुख पाप का नाश
0: ईश्वर ब्रह्मा इंद्र सुनिए मुख सलाहन मन।

0: तुद पावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार।
1: ये हाथ पैर तन दे पानी तोते उतरस खे
0: मूत पलीति कपड़।

0: गावे चित गुप्त लिख जान है लिख लिख धर्म विचारे।
1: गावे ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सवारे।
0: गावे इंद इंदासन बैठे देवते आदर नाले।
1: गावे सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे।
0: गावन जति सती संतोखी गावे वीर करारे।
1: गावन पंडित पढ़ रखी सर जुग जुग वेदा नाले।
0: गावे मोहनिया मन मोहन सुरगा मच प्याले।
1: रतन अपाए तेरे अड़सठ तीर्थ नाले।
0: गावह जोध महाबल सूरा गावह खानी चारे।
1: गावह खंड मंडल वर पंडा कर कर रखे तारे।
0: शेत दुनु गावह जो तुद पावन।

0: निर्देशे नमस्तुं निर्पेशे
1: नमस्तुं निर्नामे नमस्तुं निर्कामे
0: नमस्तुं निर्धाते नमस्तुं निर्धाते
1: नमस्तुं निर्तुते नमस्तुं अपुते
0: नमस्तुं आलोके नमस्तुं अशोके।

0: मंत्र मंत्रं नमो यंत्र यंत्रं
1: नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रं
0: सदा सच्चिदानंद सर्वं करुणासी
1: अनुपे रूपे समस्तु निवासी
0: सदा सिद्धदा बुद्धदा वृद्धकर्ता
1: अधो उद

0: चतुर चक्र दानी चतुर चक्र जानी
1: चतुर चक्रवर्ती चतुर चक्र भरती
0: चतुर चक्र पाले चतुर चक्र काले
1: चतुर चक्र पासे चतुर चक्र वासे
0: चतुर चक्र माने चतुर चक्र दाने
1: चात्री शन न सुत्रे न मित्रे न परम न पित्रे
0: न कर्म न काये अजन्म अजाये
1: न चित्रे न मित्रे परे हैं पवित्रे
0: अधिसे अदृश्य अदृश्य
1: पवित्र।

0: अल कारण है सर्व उबारण है,
1: कृत के धन है जग के करण है,
0: मन मान्य है जग जान्य है,
1: सर्वम पर है सर्वम कर है,
0: सर्व पास्य है सर्व नास्य है।

0: भरेंगे
1: ब्रह्म ही सर्व संसकीपत अंत फसे जम फास भरेंगे
0: ये नर श्री पत के प्रसा पगते नर फिर न देतरेंगे
1: कहा भयो जो दो लोचन मूंद कह बैठ रहे हो बक ध्यान लगायो
0: नाथ प्रियो लियो सास मंदर लोग जो पर लोग जुआयो
1: आस कियो बख्यान सुबैठ कह ऐसे ही ऐसे सुबह सुबिता।

0: कृष्ण प्रकाशा।
1: सकल काल का किया तमाशा,
0: जवन काल जोगी शिव कियो,
1: वेद राज ब्रह्मा जूतियो,
0: जवन काल सब लोक सवारा,
1: नमस्कार है ताहे हमारा,
0: जवन काल सब जगत बनायो,
1: देव दै जचन उपजायो,
0: आद अंत एके बतारा,
1: सोई गुरु समझो हमारा,
0: नमस्कार तसे ही को हमारी,
1: सकल प्रजा जिन आप सवारी,
0: सब गुण सुख दियो,
1: सत्रण को पल मुँह बद कियो,
0: कट के अंतर की जानत,
1: भले बुरे की पीर पछानत,
0: कुंचर सुला,
1: सब पर कृपा दृष्ट कर फूला,
0: संतन दुख पाए ते दुखी,
1: सुख पाए साधन के सुखी,
0: एक ही पीर पछाने,
1: कट कट के पट पट की जाने,
0: जब उद कर करा कर तारा,
1: प्रजा तरत तब देह अपारा,
0: जब आकर कहतों कब हूं,
1: तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ,
0: जीते बदन सृष्ट सब तारी,
1: आप अपनी बूझ उचार,
0: सब ही ते रहत निरालम,
1: जानत भेद भेद अर आलम,
0: निरंकार निर्विकार निर्लंब,
1: आद अनिल अनाद असंभ,
0: चारत पेदा,
1: जाको भेव न पावत बेदा,
0: कृपाहन अनुमानत,
1: महामूड कछ भेद न जानत,
0: महादेव को कहत सदा शिव,
1: निरंकार का चीनत न पेव,
0: अपनी बुद्ध है जेती,
1: वर्णत भिन्न भिन्न तुहि तेती,
0: कमरा लखाना जाए पसारा,
1: केह बिद सजा प्रथम संसारा,
0: केह रूप अनूप स्वरूपा,
1: रंक भयो राव कहि भूपा, पुत भुज खान बहुर रच दीनी,
0: फूल राजा है बैठा,
1: कहूँ सिमट पयो शंकर कैठा,
0: अचंभव
1: आद जुगाद स्वरूप सुयंभव,
0: मेरी तुम करो
1: सिख वार सिख संगरो, सकल मलेश करो रन काता, तिनके दुष्ट दुख तहवे मरे,
0: जवन पग परे तिहारे,
1: तिनके तुम संकट सब टारे,
0: कल को एक बार ते आए हैं,
1: ताके काल निकट नह आए हैं, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला, ताके ताप तन तुम्ह हरे हो, दुष्ट छाछ वैस कह न कोई,
0: एक बार जन तुम्हें सवारा,
1: काल वास्ते ताहे उबारा,
0: नर नाम तिहारो कहा,
1: दारिद दुष्ट दुख ते रहा,
0: केत में शरण तिहारी,
1: आप हाथ दै लिहो उबारी,
0: कठोर हो मोह सहाई,
1: दुष्ट दुख ते लिहो बचाई,
0: हम पर जग माता,
1: ग्रंथ करा पूर्ण शुभ राता,
0: सकल देव को हरता,
1: दुष्ट दोखियन को क्षय करता,
0: तजो पे दयाला,
1: पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला,
0: अनवारत पल पावे सोई,
1: दुख न तिसे व्यापत कोई अड़िल,
0: सुने गंग जाय सरस न पावई,
1: सुने मूड चित लाए चतुरता आवई,
0: दर्द पौनिक न तिन नर के रहे,
1: ओ जो याकी एक बार चौपाई को कह चौपाई,
0: संब सतर सहस बनी जय,
1: अर्थ सहस सुन तीन कही जय,
0: पाव सुधी अश्मीर वारा,
1: तीर्थ तद्रव ग्रंथ सुधारा सोईया,
0: पाहे गहे जब ते तुमरे तब ते को आखतरे नहीं आन्यो,
1: राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न मान्यो,
0: सिमरत शास्त्र वेद सबे पौ पेद कहे हम एक न जान्यो,
1: श्री सुपान कृपा तुमरी कर, मैं न कहूँ सब तोहे।

0: कच्ची है बाणी, बाणी तो कच्ची सरू बाजो और कच्ची बाणी।
1: कह दे कच्चे सुन दे कच्चे, कच्ची आंख बखानी।
0: हर हर नित करे रसना, क्या कछूना जानी।

0: ऐसा सतगुरु जी मिले तिस नो सिर सौपिए विच हुआ पचाए
1: जिसदा जियो तिस मिले हर वसे मन आए।
0: अरे आप अमूलक

शासन गड्डी। बोलो जी वाहेगुरु वाहेगुरु। एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वास गोरी पासे दसवीं प्रथम भगवती से मर कहे गुरु नानक लही त्याय। फिर अंकित करते अमरदास रामदास सहाय अर्जुन हर गोविंद सिमर श्री हर आए श्री हर कृष्ण त्याय थे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरया कानून दयावता है सब थाई हुए सहाय दसवें पाचिया। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई हुए सहाय दसा पाची ने पितरात्मक स्वरूप साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी पाठदार दाते अंतर के घर तथा बोलो जी वाहे गुरु। गरीब नवाज आप जी दे पांच प्यारे चार साहबजादे चाली मुक्ते हटियां जपियां तपियां जिन्हें नाम जपया वन छकिया दे चलाई ते वाहे दे कंडिट कीता तिना प्यारे सत्यारियां की कमाई दाते अंतर के बोलो जी वाहे गुरु। जिन्ना सिंगा सिंगणिया धर्म ये सी दिते बंद बंद कटवाए कोपरियां लवाइया जरकड़ियां दे चढ़े आर न चलाए गए गुरुद्वारे सेवा से कुर्बानियां की धर्म नहीं आ रहा सिखी सद के संश्वासन संघ निभाया तिना जी कमाई दाते अंतर के बोलो जी वाहे गुरु। पंजा तख्त सतगुरुद्वारा दाते अंतर के बोलो जी वाहे गुरु। प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे नाम चेता है चित आवन का सदका सर्व सुख हो जहां जहां गुरु खालसे साहब दर चरियात देख दे की फतेह बिरत की पहज पंथ की जी श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बुरबाले बोलो जी वाहे गुरु। सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान साह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहब के दर्शन स्नान क्योंकि यहां चंडे पुंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु। सिखा दा मन नीवा मत उची मत पत के राखे आप वाहे गुरु। गुरु गरीब नवाज पंथ सदा सहाज देता जी हो गुरुद्वारा ननकाना साहब पंजा साहब से होर गुरुद्वारे गुरुधाम जिन्हों तो आप ही पंथ को छोड़ा गया है उन्होंने खुले दर्शन की दात सेवा संभाल करता है अपने खालसा जी बख्शो ये न्योटिया की ओट गुरु न्यासरिया आसरे गुरु धन धन गुरु ग्रंथ उतार जी हो आपके चरण कामना अरदास उतार जी आपने बख्शिश की है महाराज अमृत वेले प्रकाशमान हो संगत दर्शन दादे के हाल उतार उतार जी हो बेहंत बाणियों के पाठ हो आज रागी सिंह ने आपके चरण आसा की वादे संपूर्ण कीर्तन किए ने चे पुड़िया नान साहब के कीर्तन ने कृपा करो होइया भुला चुका माह ही बख्शो पढ़ी हुई बाणी सोध के सत्खंड प्राण गुरबाणी का भाव सारिया संगतान की हिरदय शांति की पालता करो जी अगो तो शुद्ध पित्र बाणी उचाली बल बुद्धि बख्शिश करो हीर वाह ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह चंद कौन जरदास उतार पिता जी हो आप भी दर कर सेवा दा भी दर्शन कर गेल तो सारे गेल परिवार उतार पिता जी अति समूह संगतान वाले हीर वाह जी साहब श्री गुरु जी ने सच्चे पातशाह जी ने शहीदी दस याद कर दार जी उन्होंने कुर्बानियां नमस्तक होंदिया हो गरीब महाराज समूह संगतान वालों उतार पिता जी हो परसों रोज आज पत्रकारी तुर्की बाणी देखा परसा ब्रह्म करवाए सन आप ही कृपा जता है अपनी संगत सेवा ला रही उतार मेहर बात अपनी संगत सेवक सिर से रखो गिल परिवार के सिर से रखो जो उन्होंने आज सारे काज में विघता साहब स्कूल को उतार कृपा करो हम संघ अपने सेवक को सहायता बख्शो अपने सेवक की आप लाद पर रखो उतार कृपा करो सबसे पाचियो आपकी कृपा की इतिहास में आप जी बख्शिया दाता पत्रकड़ाप शाह देखा तैयार कर हाजिर उतार आप जी भोग लाओ शीत प्रसाद सात संघ की रचना लायक होवे जो जी सके स्वास स्वास आप जा पितर नाम जप बख्शिश करो दता दुखा कलेशा रोगा का नाश करो सुखा का प्रकाश करो देव दे रखा बख्शिश करो जी। गुरु की महाराज गिल परिवार की आदि चरण जरदास की सतार कृपा सचे पातशाह जी हो बच्चा परिवार के बच्चों तंदुरुस्ती बख्शो लंबी आयु बख्शो गुरु सिक्की नाम दास बख्शा करो दतार परिवार को बेनती गरीब महाराज समूह संघ परिवारों ने बच्चों तंदुरुस्ती बख्शो समूह बच्चों चढ़ती कला बख्शो अंश चढ़ता बख्शो तार मेहर करो अपनी सेवक दिन शुभकामना संबंध पूरी करनिया अच्छ सचे पातशाह जी हमेशा इस तरह आने वाले समय भी इस तरह अपने चरणा की सेवा की दाल बख्त चरणा दुराज बनाओ तार कृपा करो अपने सेवक आप रात रखो गिर परिवार के सिर से हाथ पैर रखना कमाइया सफल करनिया परिवार से एक प्याज बख्शिश करके सदा अपने चरणा की सेवा जी इस तरह दात बख्शिश करते रहने की कृपालता करनी कृपा दार जो मेहनत कर आप जो बख्शिया दातों जो दतार लगना सेवा हरिया प्रवान करो आपके चरणा सेवा कर रहे सारे टैदी सिंह सिंगणिया तंदुरुस्ती बख्शो चाटी कला बख्शो अच्छे सदा ही इस तरह अपने चरणा सेवा की भावना बख्शी पालता करो कृपा करो गरीब नवाज जियो मेहर करो अमृत वेल तो लैके दाते आई साफ संगत हाजिर दर प्रवान करो घड़ियां लिखे लाओ संगत का दर दिते फिर पेटा प्रवान शुभकामना पूर्ण करो जी कृपा करो गरीब नवाज ਸੇਖ ਪਾਉ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਏਕ ਦਸ ਵਾਗ ਪਿਆਜ ਬਖਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਸੰਤੋਸ਼ ਦਾਰ ਰੱਖਿਓ ਚਰਨਾ ਜੁੜਦਾਰ ਪਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਗਿਰੀ ਮਹਾਰਾਜ
ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਦਾਜ ਬਖਸ਼ੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਦਾਜ ਬਖਸ਼ੇ ਕਰੋ ਜੀ, ਕੀ ਬਿਨਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਦੂਰ ਦੁਰਾਜੇ ਕਾਰਨ ਬੈਠੀਆਂ ਲਾਈਵ ਪਿਤਾ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਸਿਹਤਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਪ ਘੜੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਓ, ਸੰਗਤਾਂ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤਿਲ ਫੁਰ ਪੇਟਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦਾਤਾਰ ਆਸਾਂ ਕੇ ਸਾਤਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਗਰੀਬ ਰਾਜ ਪ੍ਰਭ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਵ ਦਰ ਕੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਭਾਈ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾ ਮਿਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਸੰਗਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹਿਣ ਮਾਇਆ ਭੇਟਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੰਗਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਲੰਮੀ ਆਈ ਬਖਸ਼ੋ, ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂ ਦਾਜ ਕਰਨੀ, ਜਾਵਾਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਕਰਨੀ, ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ, ਕਮਾਈਆਂ ਸਫਲ ਕਰੋ, ਦਾਤਾਂ ਇਲਾਜ ਪਤ ਰੱਖੋ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਗਰੀਬ ਰਾਜ ਮਿਹਨਤ ਕਰਿਆ, ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਬਿਹਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ ਕਰੇ ਉਪਰੰਤ ਅੱਜ ਦੇ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਹਫ਼ਤਾ ਵਾਲੀ ਕਥਾ ਕੀ ਬਾਜ ਹਫ਼ਤਾ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕੇ ਵਗਤ ਤਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਆ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਗਰੀਬ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਦਾਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦਿੱਤਾਰ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਪਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਦੇ ਗਰੀਬ ਰਾਜ ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵੀ ਅੱਛੀ ਗਰੀਬ ਰਾਜ ਕੀ ਤਲਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ, ਚਾਢੀ ਕਲਾਸ ਸੇਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ, ਵੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਚਰਨਾਂ ਜੋੜੋ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ ਕਰੋ, ਦਿੱਤਾਰ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲੋ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਾਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੀ ਚਲਾਇਓ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਝ ਹੈ ਕੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮਹਿਲ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਗੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋ, ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਾ ਮਿਲੇਂਗੇ ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਤਰੇ ਪਾ, ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵ ਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾ ਖੰਡ।

खोज शब्द में राज करेगा खालसाया की रह ना ख्वार हुए सब मिलेंगे बचे शरण जो वाहे गुरु नाम जहाज है चढ़े सो तरे।

लिए साई मियां वीर जी ने हाथ जोड़ ले। तन सतगुरु साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी नू कहंदे ने तन कहंदे ने परचा बहुत कठिन है, तुसी लोह ते बैठ के हल करदे हो, मेरे परम मित्र मेरे को ए चरिया नहीं जांदा, जेकर आज्ञा देवे मैं लाहौर ते दिल्ली नू पढ़ा देवा। सतगुरु साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी कहंदे ने नहीं मेरे परम मित्र, दुख दे सुख दे विच परमात्मा नू मंदन वाले ने इको जिया देना है।

धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी जिन्होंने तत्ती तवी ते बह के भी शुक्र मनाया, परमात्मा नु याद कीता, ओदे पाणे नु खिड़े मत्थे परवान कीता। धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी शहीदां दे सिरताज, धन गुरु तेग बहादुर साहब जी दे दादा जी, और सानू ओदे पाणे दा रस कहना बड़ा आसान है, मनना बड़ा औखा है। गुरु अर्जन देव जी महाराज मेहर करन, सहनशीलता, निम्रता, प्रेमा, भगती, हुक्मे अंदर सब को बाहर, हुक्म ना कोय, हुक्म विच जीवन दी पावर बख्शिश करन, रहमत बख्शिश करन। आओ बड़े प्यार नाल इसी तरह अमृत वेले तो आप जी गुरु दरबार दियां हाजरियां भर के अपने जीवन नू महान महान महान बना रहे हो। आओ भाई साहब जी, भाई हरप्रीत सिंह जी कीर्तन नाल इसी तरह आप जी दे चरणा दियां हाजरियां भरनगे। गुरु अर्जन देव जी दी असीसां, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सरबत दा फला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी।